नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन और व्यापार जारी रखने का आह्वान किया है।

0: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: आज नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया और जो कुछ हुआ है उसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान चली गई है और कई भारतीय गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
0: जो दो जहाज जिसपे कल रात हमला हुई है, आज सवेरे हमला हुआ, तो इन दोनों जहाज में 30 हमारे भारतीय नाविक थे। एक जहाज में जिसमें 12 लोग थे उसमें एक नाविक की मौत हुई है, और दूसरे जहाज जिसमें 18 भारतीय नागरिक या नाविक थे उसमें से 9 लोगों को घोर चोट पहुंचा है उनको, उसमें से 2 काफी गंभीर रूप से घायल भी है। तो ये था ब्यौरा जो कल का या आज सवेरे का जब भी समय में जब हमला हुआ। इसके अलावा कई एक जाने हमारे लोग गई है, और मैं कह सकता हूं कि जितने भी देश हैं दुनिया में उसे सबसे ज्यादा जो कमर्शियल शिपिंग पर जो भी हमला हुआ वो सबसे ज्यादा नाविकों की, हमारे देश की लोगों की जान गई है।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन दुर्व्यवहारों और कुकर्मों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं, इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जल डबरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका हॉर्मुज जल डबरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज जल डबरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर 0 शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI युवाओं के कौशल को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन में उन्होंने सरकार की अनेक सामाजिक सुरक्षा पहलों पर बल दिया और स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि यह अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौड़ा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उन्हें कर्नाटक में भाजपा का एक मजबूत स्तंभ बताया। उन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और पार्टी कार्यकर्ताओं की कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 32वें ओवर में 6 विकेट पर 155 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal,

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि

0: विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और ये फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
3: This is also one of the most ambitious.
4: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया।

0: उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
1: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
2: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
3: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important

0: constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title The Voice of Justice is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional trust.
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़ककर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसलकर 24,052 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. India reiterates its call for safe and unimpeded navigation through Strait of Hormuz, urges Iran and US to return to dialogue for a lasting solution to the conflict. New Delhi says ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation and denial of fundamental rights to local population. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom granting zero duty access to most of Indian exports comes into force from tomorrow. Election Commission extends schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. France to clash with Spain in first semi-final of FIFA World Cup in Texas tonight. And in men's cricket, India chased a target of 259 runs set by hosts England in first ODI at Birmingham. And now the news in detail. New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
4: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
3: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Al Bahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today.

0: आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए रेल परिवहन व्यवस्था को अत्याधुनिक, सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेल में हो रहे सुधारों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: अरुणेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: अरुणेंद्र जी। सबसे पहले तो हम इस पर आते हैं कि रेलवे में लगातार सुधार जारी हैं, कई बड़े बड़े सुधार किए जा रहे हैं और अब जो इन नए सुधारों की घोषणा हुई है, इनका उद्देश्य रेलवे को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और लोगों के अनुकूल बनाना है। तो आपके हिसाब से ये सुधार भारतीय रेलवे की कार्यशैली और देश की जो लॉजिस्टिक व्यवस्था है उसमें किस प्रकार से बदलाव लेकर आएंगे?
2: देखिए, सुधार तो रेलवे में एक लगातार प्रक्रिया है, लेकिन जो अभी सुधार देखे जा रहे हैं वो बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। मतलब जो बिल्कुल आधारभूत ढांचा है उसको बदलाव कर रहे हैं, जिससे कि प्रगति में जो बाधाएं अभी तक महसूस हुई हैं उनको बदला जा सके। और एक एक सेक्टर को लेकर आगे बात चल रही है, चाहे फ्लाइश ले लें, सीमेंट ले लें, या कॉन्ट्रैक्टर्स की क्वालिफिकेशन ले लें, उनके जो स्टाफ है उनके स्किलिंग को लेके देखें, तो ये सब चीजों पे ध्यान देके एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। और पुराने कदम जो लिए गए उनको परखा गया है कि उसमें कुछ कमी रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जाए। तो ये एक नीतिगत ढांचा परिवर्तन है जो कि मूलभूत रेलवे की मानसिकता को दिखाता है कि इतने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा खर्च किया जा रहा है तो फिर बाकी बाधाएं जो अभी तक बाधाएं बनी हुई थी उनको हटा दिया जाए।
1: अरुणेंद्र जी, भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है और रेल भूमि वेब पोर्टल शुरू किया जा रहा है, जिससे कि मुआवजा बंटने की बात हो, कानूनी समय सीमा या फिर दस्तावेजों की रियल टाइम निगरानी संभव करने की बात हो, तो ये पोर्टल पारदर्शिता और विवादों में कमी और परियोजनाओं की समयबद्धता सुनिश्चित करने में किस प्रकार प्रभावी सिद्ध होगा?
2: देखिए, इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक तो स्टेशन मॉडर्नाइजेशन की बात उठती थी, जो कॉन्ट्रैक्टर्स को बताया गया कि ये स्टेशन है, इसमें ये मॉडर्नाइजेशन होगा, इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो पहला सवाल ये उठा कि भाई आपके पास रेलवे के पास जमीन कौन सी है, क्योंकि कई जगह अतिक्रमण हो रहा है, कई जगह और चीजें बन गई हैं। अब जब तक कोई डिजिटल रिकॉर्ड ना मिले तो वह जाके देख ना सके कि भाई रेलवे की जमीन है या रेलवे पर जमीन नहीं है,
1: बिल्कुल
2: तो आगे बात बने। अभी तक पेपर पे ही कंफ्यूजन रहता था, इसके बाद किसकी जमीन है, किसको पैसा मिलना है। अगर ये सब डिजिटल रिकॉर्ड हो जाएंगे तो ये सब जो तकलीफें हैं जो हर प्रोजेक्ट को डिले करती है, बिकॉज भूमि अधिग्रहण ही सबसे बड़ी समस्या है शुरुआत होने में। एक बार प्रोजेक्ट चालू हो जाता है फिर आगे गति पकड़ लेती है। ये अगर रेल भूमि पोर्टल पे सबके लिए हो जाएगा, जिसकी जमीन है, जिसको काम करना है, जिसको पैसा मिलना है, जिसको पैसा देना है और कब पैसा दिया, सब चीज वहां पे लिखी हुई है, क्यों देरी हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, फंड की कमी है या ओनरशिप रिकॉर्ड की कमी है, तो ये सब चीजें आपको रेल भूमि पोर्टल से साफ साफ दिखेंगी। जैसे टिकट रिजर्वेशन में आपको पीनार बर्थ नंबर सब दिखता है, ऐसे इसमें भी दिखेगा।

0: जी, फ्लाई ऐश की अगर हम बात करें तो हर वर्ष लगभग 96 मिलियन टन फ्लाई ऐश का उपयोग निर्माण कार्यों में होता है और इसके खुले पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या रहती है। तो अब विशेष कंटेनरों में इन्हें भेजने का निर्णय लिया गया है। तो ये जो नई व्यवस्था है, इससे पर्यावरण संरक्षण और रेलवे की माल ढुलाई क्षमता और औद्योगिक जगत को किस प्रकार लाभ होगा, खासतौर पर जब हम इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि रेलवे की आमदनी जो है वो भी बढ़ानी है।
1: लेकिन सबसे बड़ा जरूरी बात यह है कि इस चीज का जो इस्तेमाल करने वाले हैं, जो इंडस्ट्री है, उनसे तालमेल करके ये डिसीजन लिया गया है कि इसको कंटेनराइज किया जाए। और जहां से शुरू होती है कहानी, वो खुले वैगन्स में हो या किसी और तरीके से हो, उसको भटा के कंटेनर में डाल के और नियत स्थान तक भेजा जाए, और जहां उतरे वहां भी ये समस्या पैदा ना करे। पहले तो रेलवे अपना वैगन लेके चली जाती थी और वहां पड़ा रहता था खुले में, तो वहां तकलीफ पैदा होती थी। अब जहां उतरेगा वहां तभी खुलेगा जब उसको इस्तेमाल करना हो, जरूरत हो। और फिर खुलने के तरीके, वैगन के डिजाइन, सब कुछ जो है उसी तरीके से बनाए गए हैं, तो ये पर्यावरण में बहुत फर्क पड़ेगा। रेलवे की माल अगर आपको 95 मिलियन टन सीमेंट में भेजना है, फ्लाई ऐश एक बहुत बड़ा मटेरियल है जो कि लोडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और साथ साथ पर्यावरण की तो बहुत बड़ी समस्या है। जब फ्लाई ऐश के जहाज बनती है उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही तकलीफ है, जो खत्म होने की आसार दिखते हैं।
0: जहां तक विशेष कंटेनरों की हम बात कर रहे हैं, और तो लॉजिस्टिक्स एक बड़ा मुद्दा आता है कंटेनर के संदर्भ में, और रेल मंत्रालय फ्लाई ऐश के साथ साथ उर्वरक भी भेजता है, अनाज भी है, अन्य वस्तुओं का परिवहन भी किया जाता है, तो इन कंटेनरों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो बदलाव है ये भारत की मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नीति और माल परिवहन प्रणाली को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगा, साथ ही जो हम आधुनिक रेलवे को बनाने की बात कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा?
1: देखिए, कंटेनराइजेशन जहाँ जहाँ आया है वहाँ पे सफलता मिली है, और ये एक बड़ी उपलब्धि है रेलवे की। रेलवे ने अपनी सोच को थोड़ा बदला है और इसमें फर्टिलाइजर, फ्लाई ऐश, सीमेंट या सब ऐसी चीजों को लेकर आ रहे हैं जो कंटेनर में जाके जाए और आगे बढ़ के जिसको जरूरत हो, किसी को पूरी जरूरत होती है, किसी को कम रेक की जरूरत होती है, तो कंटेनर तो एक बहुत ही छोटा एक रेक 140 x 45 होता है, तो उसके लिए आसानी रहेगी, उसके लिए अनलोडिंग जब है तब कर सकता है, मूविंग वेयर हाउस ऑल्सो। तो जब भी आप देखेंगे कंटेनर आया है तो कंटेनर मूवमेंट आसान है, लोडिंग अनलोडिंग की फैसिलिटी में तकलीफ नहीं है। कंटेनर आप जो यार्ड जाके देखेंगे वो बहुत रोड अप्रोचेबिलिटी उसमें बड़ी अच्छी होती है। ये जो नीति परिवर्तन हुआ है कि कंटेनराइजेशन को लेके आएंगे, कंटेनराइजेशन और एफिशिएंट और अच्छा बनाएंगे, इससे पर्यावरण, इससे ग्रीन क्रेडिट्स, कार्बन क्रेडिट, सब में आपको फायदा दिखेगा।
0: इसी से जुड़ा एक और मेरा सवाल आपसे है कि रेलवे कंटेनर संचालन के लिए यूनिफाइड लाइसेंस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है, जिसमें इसे 20 वर्षों तक स्थिर रखने की बात कही है। तो ये जो नई नीति इस तरह से आ रही है, इसमें निजी निवेश बढ़ने की संभावना आपको नजर आती है, और लॉजिस्टिक का जो काम है उसमें नए प्लेयर्स को भी काफी मौका मिलेगा?
1: सबसे पहले देखिए 2007-08 में शुरू हुआ था जब CTO आए थे, इंटरनल प्लेयर्स। अब ये दूसरा जबरदस्त तरीका अपनाया गया है लोगों को लाने का, जिसमें कि प्रोसीजर ठीक है, जो सरकार से जो भी डील करता है उसको लगता है बहुत ज्यादा नियम है और एक नियम खत्म होते ही दूसरा नियम शुरू हो जाता है, ये सब चीज उन्होंने हटा दी है और कहा है कि आप एक बार एक मुश्त राशि दीजिए, रिन्यूअल में कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ना चाहे 20 साल के लिए है, तो वो सब चीजें आपको एक बार, वंस यू आर इन, आप हमेशा ही अंदर ही रहने वाले हैं। तो आप कंटेनर प्लेयर जो सीरियस प्लेयर है, तो आप वाकई आना चाहते हैं, वाकई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा माध्यम खुल गया है।
0: अरुणेंद्र जी, जब हम उर्वरक की बात करते हैं तो किसानों और उर्वरक कंपनियों या फिर रेलवे की जो माल परिवहन व्यवस्था, इसमें इनका बड़ा रोल होता है। अब 50 अलग अलग माल भाड़ा स्लैब समाप्त कर प्रति टन प्रति किलोमीटर की पारदर्शी व्यवस्था लागू की जा रही है, ये जो बदलाव है इसका कितना इम्पैक्ट आपको लगता है कि जब ये होगा तो इससे किसानों को भी लाभ मिलेगा, कंपनियों को भी लाभ मिलेगा और रेलवे भी इससे मुनाफे में होगा?
1: ये रेलवे मुनाफा तो एक चीज है, बट जो इस्तेमाल करता है, अगर उसे कहा जाए कि आपके पास 50 फेयर है, जैसे आप चेयर कार में जाए तो आप चेयर कार 50 तरह की है, तो आप बिल्कुल दिमाग जो है खत्म हो जाएगा। इस तरफ ध्यान नहीं गया था कि भाई जो इस्तेमाल करते हैं उनको कितने तरह के फेयर देने पड़ेंगे। तो 50 तो एक ऐसी जबरदस्त फिगर है कि आने के पहले ही लोग भाग जाएंगे, और जब तक आप उसको अच्छी तरह उसको जानते ना हो, लेकिन अब जब बात हटा दी गई तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपने ट्रक से इतने में लगता है पैसा, टेम्पो से इतना लगता है, रेल इतना लेती है, इतने समय पहुंचाती है, तो एक बहुत बड़ी पारदर्शिता आ जाएगी और ये रेट समझ में आ जाएंगे कि भाई कितना खर्चा आएगा मेरे को, और तुरंत पता चल जाएगा। और ज्यादा आपको इसमें तकनीकी और या प्रोसीजर जानकारी की जरूरत नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रेन रिजर्वेशन के माध्यम से 3AC का किराया कितना है आप देख लीजिए, एक टैक्सी का किराया कितना है आप कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, कोई तकलीफ की बात नहीं है। इससे ये प्रोसीजरल चेंजेस हो रहे हैं, अगर फेयर स्ट्रक्चर में फेयर स्लैब्स को खत्म करके एक स्लैब बनाने की योजना, ये तो एक क्रांतिकारी कदम है रेलवे की प्रगति के लिए, और सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए जो इसको इस्तेमाल करेंगे।
0: अरुणेंद्र जी, जब हम अनाज की ढुलाई की बात करते हैं तो पारंपरिक परिवहन के दौरान

0: लगभग 4 से 5% अनाज या फिर दालों या फिर जो भी इस तरह की चीजें होती है उनके नुकसान की बात कही जाती है। अब इन्हें भी कंटेनरों में ले जाने की मंजूरी दे दी गई है। तो ये जो व्यवस्था की जा रही है खाद्य सुरक्षा, भंडारण दक्षता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भी महत्वपूर्ण, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इस बदलाव को आप एक आम जनमानस के लाभ के हिसाब से कैसे देखते हैं?
1: देखिए, अगर आप नुकसान की भरपाई की बात करें तो नुकसान तो होता ही, भरपाई बाद में होती, लेकिन नुकसान हो ही ना, ये चीज कंटेनर की एक देन है। क्योंकि कंटेनर सील करे जा सकते हैं, लॉक तो बहुत ही आम बात है, कंटेनर का डिजाइन ऐसे किया जा सकता है कि कोई उसको बाहर से तोड़ा ना सके, वैगन में दवा सेल लगा लेते हैं और फिर कंटेनर का ध्यान दिया जाएगा कितने कंटेनर है, कहाँ उतरे, फिर उसको वापस लाना है। तो इस तरह से आपको जो रास्ते में जो चोरी की बात उठती है वो कंटेनर से तो बहुत ही कम हो गई है, जो कि हम कंटेनर ट्रैफिक में अभी भी देखते हैं कि जो कंटेनर में सामान जाता है उसके चांसेस लीकेज के, थेफ्ट के बहुत ही कम है। और ऑनलाइन उसको देखा भी जा सकता है कंटेनर कहाँ है आपका। एक वैगन देखना इतना आसान है नहीं है जितना एक कंटेनर देखना आसान है अभी ट्रेन के पोर्टल पे।
0: यानी कि ये बहुत ही आसान बनाया जा रहा ताकि सारी जो सूचना है पूरी तरह से पारदर्शी होकर पहुंचे।
1: जी हाँ बिल्कुल, मतलब जो रेलवे का आगे बढ़ना है तो कस्टमर ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: और कस्टमर ओरिएंटेशन में प्रोसीजर की कमी हो, पारदर्शिता की हो और साथ साथ एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े और फिर दोनों लोग को सहूलियत हो।
0: जी,
1: और सहूलियत सब चीजें तभी होती हो जबकि आपको कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसे जो लागत है उसकी कमी हो और साथ साथ रेलवे को नुकसान ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी सोच, जो पावन रिफॉर्म की बात हो रही है और आज जो 11 नंबर 17 नंबर पर रिफॉर्म जारी किए गए हैं,
0: जी,
1: ये आप देखेंगे धीरे धीरे करके इतना दबाव हो जाएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे हुआ क्या रेलवे को साल भर।
0: जी अरुणेंद्र जी, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार रेलवे को आधुनिक बनाने की बात करते हैं। अभी उन्होंने स्किल सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क की बात कही है। तो रेल परियोजनाओं में जो काम करते हैं खासतौर पर प्लम्बर है, वेल्डर है, फिटर है, राजमिस्त्री या अन्य जो कर्मचारी हैं, इनके लिए कौशल प्रमाणन व्यवस्था लागू की जा रही है। तो इस पहल से आपको लगता है कि निर्माण की गुणवत्ता बेहतर होगी, सुरक्षा मानक जो है हमारे उनमें काम बेहतर होगा और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की जो बात है उसमें काफी सुधार आएगा?
1: ये कदम ऐसा है जो उसको अगर आप मापदंड के रूप में देखें, अब आपको पहले ट्रेन करना पड़ेगा वेल्डर कैसा है, ठीक है नहीं है, उसकी अब कोई जरूरत नहीं। जैसे आप समझते हैं कार के ड्राइवर का लाइसेंस होता है, उसको मालूम है लाइसेंस है तो आप गाड़ी चला सकते हैं। अगर आप वेल्डर लाइसेंस है, प्लम्बिंग लाइसेंस है, लाइसेंस में किस किस तरह के आप काम कर सकते हैं आपका स्वागत है। इससे क्या होगा कि जो कंपनियां हैं आप देख रही हैं लोगों को जिनको भर्ती करना चाहती है तो उसके लिए बहुत बड़ा फायदा होने को दिखता है। जो कंपनियां हैं उनके लिए अच्छा है और मेरे पास अगर सर्टिफिकेट है तो मेरे लिए भी अच्छा है कि मैं जाके काम कर सकूं, उनके पास मेरे पास लाइसेंस है। अब एक ऑथराइज्ड जो संस्था ने मुझे सर्टिफिकेट दिया जिसमें उन्होंने काफी ट्रेनिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद प्रमाण पत्र जारी करते हैं, जो रिकॉग्नाइज करने की व्यवस्था है इसको एक ढांचा नीतिगत दे दिया गया है और ये मजबूर किया गया है कि अपने को ऐसे ही लोग इस्तेमाल करें जैसे कि काम आगे बढ़ने में गति हो, कभी काम खराबी ना हो, गलत काम ना हो और सीधी दिशा में सही तरीके से काम हो।
0: वैसे रेल मंत्रालय का लक्ष्य है कि अगले 24 महीने में इन प्रणालियों को, इन सभी परियोजनाओं को लागू किया जाए। तो आपको लगता है कि भविष्य में ये मॉडल अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सरकारी निर्माण कार्यों में भी काफी मददगार साबित हो सकता है?
1: अभी देखिए शुरुआत हुई है और आप सुना होगा आपने स्पीच में कि 3 महीने में काफी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हुए हैं, तो ये आगे बढ़ता जाएगा। रिफॉर्म तो बात कही जा रही है, रिफॉर्म तो जैसे आगे बढ़ेंगे जो रिफॉर्म्स को भी आगे रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसलिए ये रेलवे की सोच की बहुत बड़ी चीज है, ये चीज जो है रेल के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी क्योंकि नीतिगत सोच को बदली करना एक बहुत तकलीफ है और ऐसी संस्था जो इतनी पुरानी संस्था है एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा कदम है जो हमारे सामने खुलता हुआ नजर आ रहा है।
0: बिल्कुल अरुणेंद्र जी, बिल्कुल अंत में कार्यक्रम के पहुंच चुके हैं। विजन 2047 की बात करें तो रेल मंत्रालय आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण, निजी भागीदारी, हरित परिवहन और तकनीकी नवाचार पर लगातार जोर दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 10-20 वर्षों में भारतीय रेलवे को विश्व की जो अग्रणी रेल प्रणालियां हैं उनमें शामिल करने के लिए किस तरह की प्राथमिकताएं ली जा रही, किस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं?
1: देखिए 2047 से पहले रेलवे काफी कुछ कर लेगी। सबसे ज्यादा जरूरी है ये ग्रेट कॉरिडोर और हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, इन दो में रेलवे की महान प्रगति आपको देखने को मिलेगी। भारतीय वर्जन बुलेट ट्रेन का आपको देखने को मिलेगा और ये जो कंटेनराइजेशन में पहल है इसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट रेलवे कम करेगी और रिजर्वेशन ऑन रिक्वेस्ट जिस दिन आप चाहें रिजर्वेशन आपको मिले, ये 2-3 चीजें बहुत जरूरी है और रेलवे इस दिशा में आगे काम कर रही है। जो ये कोई नहीं चाहता कि वेट लिस्ट टिकट बैठ लेके और आप आगे ट्रेवल करें टूरिज्म के बारे में, कंफर्मेशन हर एक को चाहिए होता है और रेलवे इसी दिशा में नई ट्रेनें, नई लाइनें और लाइनों में ज्यादा कैपेसिटी करना, सिग्नलिंग सुधार करना, इसमें बहुत जबरदस्त काम हो

0: काफी पैसा भी खर्च हो रहा है। तो ये दो तीन चीजें सामने आती हैं जो कि आप देखेंगे कि जल्दी ही जल्दी इसमें लोगों को राहत और मिलती जाएगी। धन्यवाद।
1: अरुणेंद्र जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे रेल परिवहन व्यवस्था को अत्याधुनिक, सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेल में हो रहे सुधारों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।